0: Hei Akashvani Aizawl FM za oiza point pasari atanga puan chua ani vo in niria thlanga sangni somni paruk zirtop ni kan hun voi khatna chu kan lo chanta a min ngai thatu zong zong te chebe kan buk chewa ni chatak mang turin du sakna kan hlan cheu program puang tu hi walal ngei zwali kani a control room engineer duty c walal ompuya ani vo ina kan thupui atan anuam apiang tu chuan she om a phathuayang anuam apiang tu chuan she om a phathuayang ti ani a daria ta tang hian hindi devotional song mangin kan segmente kan chandon ani
1: namaste shrotao hamare sath bane rehne ke liye dhanyawad ab aapko behtar seva pradan karne ke hamare prayas mein hamare sath jure रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें
0: नमस्ते सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम से 100.7 और आप सभी को आरजे वेली की तरफ से सुप्रभात यस और आज के इस सबसे पहले हिंदी के खंड पर हम सुनेंगे मसीही गीत दोस्तों और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों आप सभी की नींद अच्छी गई होगी और आज सुबह तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत सुबह हमने देखा है सूरज निकला है और बारिश भी नहीं हो रही है ना दोस्तों यस तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है और हम आशा करते हैं कि आज के दिन आप सभी के लिए अच्छे से दिन गुजरे दोस्तों और हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार रहेगा फिलहाल तो चलिए आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे यस जब भी आपको मौका मिलेगा आप सभी एफएम से 100.7 पर जुड़ जाइए हमसे बातें करिए और हमारे पेश किए गए गीत सुनिए दोस्तों ठीक है और यस हम बहुत खुशनसीब है दोस्तों कि हमें दोबारा इस तरह नया दिन मिल जाता है तो आइए हमारे आज के इस नए दिन को फिर एक बार बहुत ही हसीन बनाते हैं बहुत ही खुशियां और आनंद से इस दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ और इस खंड में मैं आप सभी को मसीही गीत सुनाऊंगी और इस मसीही गीत में आइजोल वेस्ट एरिया मसीह संगति जायपोल रिपब्लिक वेंग मसीह संगति जायपोल और वाइवकॉन मसीह संगति जायपोल के गाए हुए गीत हम सुनेंगे और सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को यस आइजोल वेस्ट एरिया मसीह संगति जायपोल के आवास में गाया गीत जो क्रूस मेरी तरफ से आप सभी के नाम

तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था इस आइजो वेस एरिया मसीह संगति जायपोल के गाए हुए गीत जो क्रूस्ट और यस जो क्रूस और अगला गीत सुनते हैं वाइवकॉन मसीह संगति के गाए गीत मेरे यीशु मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा रिपब्लिक वेंग मसीह संगति के गाए गीत, मसीही गीत आओ तुम? आप सभी को पसंद आया होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया है। और यस दोस्तों, कभी मत भूलना।

कि यीशु मसीह मतलब भगवान हमारे पास हमेशा रहते हैं, ठीक है। यस, कभी भी अपने आप को उदास मतलब फील मत कीजिए दोस्तों। जीवन है, जिंदगी है दोस्तों, कुछ ना कुछ कठिनाई तो आएगी, है ना दोस्तों। यस, कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस मत कीजिए कि हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे लिए मदद करने वाला, हमें हौसला देने वाला, है ना। बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आपकी आशा मत छोड़िए दोस्तों, उम्मीदें मत छोड़िए, ठीक है। यस, हमेशा हमें भगवान के वचनों पर चलना चाहिए और ज़रूरी भी है दोस्तों, ठीक है। यस, और सबसे पहले आप उन्हें मतलब उनसे प्रार्थना करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करेंगे आप, जितना मतलब जितनी प्रार्थना करेंगे ना दोस्तों, आपका मतलब आपको अच्छा लगेगा और भगवान ना आपकी ज़रूर सुनेगी, ठीक है। यस, और यहाँ पर अंगूरी साइलो या नर्चे वील तुक चर्चे बे ओ कलो गाय ठरें सेनिया जामा कलो ngai tha ke pang ala boy de onyang next kha ramriak mek pu elvia an puelvian nguntaka alongai thangatan o rondiani nguri sailo hian ole ungur kalomnu tuke o minlongai thakawangin o chuan ithan sakte po khan alo shen nge tora ngayang o ole to chaliye ab ham chalte hain agle git ki taraf nile aasman republic wing masi sangati ke gaaye git aap sabhi ke liye nile aasman।

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ मसीही गीत सुनकर आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इस खंड में मैंने आप सभी प्यारे दोस्तों को आइज ओवेस एरिया मसीह संगति, जायपोल रिपब्लिक विंग मसीह संगति और वाइफकॉन मसीह संगति जायपोल के गाए गीत हमने आप सभी को सुनाया था। तो दोस्तों, इस खंड का आखिरी गीत सुनाने का समय दोबारा आ चुका है और इस खंड का आखिरी गीत, इस खंड के आखिरी गीत के लिए मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी, हे माली है साली सैली, हे मैली है सैली, वाइबकॉन मसीह संगति के गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और मिलते हैं दोस्तों 10 बजे, ठीक है? यस, 10 बजे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे और हंसेंगे भी, ठीक है? यस, मुझे आपके इन सभी दोस्तों का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए सुनते हैं ये आखिरी गीत इस खंड के लिए, और तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। और 8:30 बज चुके हैं, आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी हो चुके होंगे और जा रहे होंगे, और या किसी सफ़र के लिए आप निकल रहे होंगे। तो आप जो भी सफ़र के लिए निकल रहे हैं, आप सभी सही सलामत पहुँचना अपनी जगह, और आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप सावधानी से चलाइएगा, ठीक है? यस, आप अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना दोस्तों, ठीक है? और हमेशा आप बहुत ज़्यादा जो भी काम करेंगे करने से पहले दोस्तों आप प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है? यस, और हमेशा आप अपनी उम्मीदें मत छोड़ना दोस्तों, हमेशा आशा रखना कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दोस्तों आपको अच्छा समय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं 10 बजे, ठीक है?

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी दोस्तों को आरजेवीएल की तरफ से। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM Zoy 100.7। दोस्तों, और आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पर। और आप सभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमें जानना है। हमें मतलब

जाना है कि आपका समय कैसे बीत रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम करने के जगह पहुंच चुके हैं, ऑफिस पहुंच चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, दुकान, खेत, कहीं पर भी हो। और अगर आप घर पर रहकर कुछ कुछ कर रहे हैं तो भी हमें मतलब जानने के लिए, मतलब हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं या यस। खैर, जो भी हो, आप सभी का हम दिल से यस स्वागत करते हैं आज के हमारे हिंदी के खंड पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीतता रहे और शायद आप किसी सफर के लिए निकल चुके होंगे, निकल रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए, आप भी जो भी सफर के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाइएगा, ठीक है? तो चलिए, इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को। बहुत ही खूबसूरत गीत, आप मुझे अच्छे लगने लगे। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से, इस खंड की शुरुआती गीत आप सभी के नाम।

तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा अभिजीत और अलका यांगनी के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे। यस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल जरूर पसंद आया होगा मेरे पेश किए गए गीत। यस, आप सभी के साथ जुड़ी है हिंदी के खंड पर आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। यस, तो अब हम चलना चाहेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी तुमसे मिलने को दिल करता है। यस, लेकिन उससे पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ बढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे दोस्त कुंगतिया की तरफ से संदेश आया है और यस कुंगतिया की आरजे अमोस ए आरजे अमो वी एली अलाइचियांग कऊजा मिखा कबक खो गई एम रिवेल्स अनी और Swan, see you later. Oh, I delete it. I can't call you. Ah, my say, I can't get message to hello. I'm Kiao. Maya, see you later. Hello, RJ. Isual tibayle. Nang po ni chatak mang turin do sakna lan ini. Oh, aron di ah. Kaban lao. Oh, mulao lian em ve. Oh, tro see you. Or yahan par omega sangte ah. Pohyan ka nga izual ka inleng pa in mizaw mo apuang tu tsu ati a o ni e ka nga izuali alom amel chania o tekalaw ti a iplay tour ka inleng pa tan le ngakte pa bil ko clear le italia ulia

Oh, Aronti. Pohi ka law mulian. Ka law mulaulian lutuka. Oh, तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को इस तरह मुझे संदेश भेजने के लिए. और मैं कह सकते हैं मैसेज और थे इन ड्यूटी मसखान इति इति एक पोनी से कन खे खल रिलॉक्स खे खल रियाट्स. तो चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी अगला गीत तुमसे मिलने को दिल करता है. यस, आप सभी प्यारे दोस्तों से ना मुझे मिलने का बहुत मन करता है. ठीक है, आपके संदेश भी इतने अच्छे खूबसूरत होते हैं कि क्या करें दोस्तों. आप जिस तरह आप सभी के संदेश इतने खूबसूरत है ना, तो उसी की तरह आप भी बहुत खूबसूरत होंगे. जैसे अमोस कहते हैं. ठीक है. तो चलिए सुनते हैं तुमसे मिलने को दिल करता है मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा मेरे पेश किए गए गीत? यस, हम आपसे मिलने को बहुत मन, मतलब हमें आपसे मिलने का बहुत मन है दोस्तों. यस, आपसे मिलने का बहुत दिल करता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, इतनी दूरी है ना हमें, हम और आप में, क्या करें. लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हम एक ना एक दिन तो आपसे जरूर मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, है ना दोस्तों. तो चलिए, वैसे भी मुझे तो उम्मीद है कि हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है. ठीक है, जिंदगी बहुत छोटी है, और क्या पता फिर मुलाकात हो जाए, है ना दोस्तों. तो चलिए, अब हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ. और यस, अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, जादू है तेरा ही जादू, कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत. ठीक है, और उससे पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ. यहाँ पर जामहियान आरजेवीएल नमस्ते, ओ जाम नमस्ते, ओ चानी ना थो ना मुनादे थेंग तो तुरा कंगाया दार सोम पेल तो आई थोकले चार चार तो तुरा पो कंगाया चार तो मिलो थोकलो ओ जाम चानी इस सेगमेंट आ कलो इन रिपोर्ट ले ए नेक्स्ट सॉन्ग छपार्टी लोर ते पत्नी कुंग ते ले अमो सस शिलोंग ते तानी लविन इतान रंद्यानी to party lora ti o a food lat anin me tro kung te ya na in me zwal ke ti to party lora ti kamo or iron omega sang te hian iron duty masakhan in ti te to kin ke in leng pa la ka than sak ve a in let's hear lo zu ya mizawa ni mo o apuang tu hi ati chea niang niang kalau in ti ringota ini chiang ti ro i play tour ka che vi elitan liao liao o aron tia ni omega sang te hian chuan ld LB ren thlei hian RJ ole nuiri hi kangai thakham lo ni tin mei hian i segment hi nei reng la chatur i play le tur kha i tan liao liao o ron the bell sunny LB ren thlei hian avan nom chin tak em o chuan hun cha deuh mang turin du sak na kan hlan che ni o FM zo oi 100.7 kal tlangin o RJV eli hian o LB ren thlei Swan Ming Moi Te Hian Vanel Nazareth Hospital La Omega Material Laudam Twai Kadu Sak A Agla Git Amatan Liao Liao Aronti Bogani Omega Omega Sang Te Ni Lavin Ming Moi Te Yan Aronti Ani Ni E Uramapol Laudam Twai Twai Second Ti Ni O Swan Ngak Te Pa Bilkul Clear Hian RJVL La Play Le Tur Kha Ming Moi Te Ya Par Paripu Omega Sang Te Ya Nguri Sai Lao Jil Zama Itan Kala Ne Aronti Le Bokani Ole Bahut Bahut Shukriya आप सभी दोस्तों को. तो चलिए फिलहाल चलते हैं जादू है तेरा ही जादू, कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज की तरफ. और यस, आप सभी प्यारे दोस्तों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आपके प्यार भरे संदेश के लिए. आप मुझे अपने संदेश के जरिए खुश करते हैं, हंसी दिलाते हैं, मतलब हमें मुस्कुराहट देते हैं. तो उसी की तरह हम भी आपके समय को अच्छा बना रहे होंगे, है ना. यस, तो चलिए गीत की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी.

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कुमार सानू के और अलका याग्निक के बहुत ही रोमांटिक आवाज में गाया गीत जादू है तेरा ही जादू आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारा समय 10:40 तक है, यानी 10:40 तक का समय है हमारे पास। तो यस, मैं चलती हूँ आपके भेजे के संदेश की तरफ। कुंगते अहियान, कुंगते है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं कुंगते बड़े ही, मतलब उनको ना बहुत मजाक पसंद है और मजाक करना इनको बहुत आता है। ठीक है, मजाक करना कुंगते से सीखिए। ठीक है और कुंगते लिखते हैं कि कऊ जिल जामी ठीक थुसिया जिया ही एंग अंग पो इन लल जामी हियान आरजे मोम वेली ही दुव्या मासे आरजे मोम वेली ही थे थोंग अथोक देर सी लौ का खो गई अनि रोटी सुन सान मैंग मोइते मैसेज कन छियार ले अंग मैंग मोइते की तरफ से जो संदेश आया है मैंग मोइते हियान वनल अमा ङाकते पातान रोंतियानी ओले। तो चलिए, आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए एक प्यार भरा गीत पहली बार मिले हैं बाला सुब्रमण्यम की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों के लिए।

मैं दोस्त उम्मीद है आप सभी को लव तुझे लव मैं करता हूँ करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आया होगा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत। तो अब हमारे लिए आप सभी को आखिरी गीत इस खंड के लिए सुनाने का समय आ चुका है। यस, क्या करें दोस्तों, पूरे दिन आपको हिंदी के गीत सुना दे क्या? अगर आप सुने अगर आप पूरे दिन भर हिंदी के गीत सुनेंगे ना तो आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आपकी आपका ये जो समय है पल है बोर ना हो जाए, इसलिए अगले खंड पे आपके साथ जुड़ने के लिए आपकी दोस्त आरजे लोमी यस मिजाओ डिवोशनल सॉन्ग में हाजिर होगी और हम वापस आएंगे 12 बजे। यस दोस्तों 12 बजे। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे साथ अच्छा लगा होगा और आप सभी को दिल से मुझे संदेश भेजने के लिए मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुंगते ह्यान कंसार ले लोग कुंगते ह्यान अजय ओ कऊ जे लल जामिचू इवन बोल न सवे या बोल वक वक छीन रो बोल ओम सिया अशिलवा अलोम वुर वुरंग छु रोन दिले वेल्स अनि मो जाम कुंग ते हियान। ओले, तो चलिए फिलहाल मैं इस गीत के साथ विदा लेना चाहूंगी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। यस तो क्या आप ही मेरी आंखों में प्यार देख रहे हैं या नहीं? मुझे तो आपके आंखों में आपके संदेशों से पता चलता है कि आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। यस, तो इस तरह हमारा प्यार यूं ही बरकरार रहे मैं तो चाहती हूँ जिंदगी भर। और आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा FM ZOY 100.7 को प्यार देने के लिए। तो इसी तरह आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा और हम चाहते हैं कि आपका समय आपका दिन यूं ही अच्छे से बीतता रहे। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? और आपका समय, आप सभी का समय कैसे चल रहा है? हमें जानने के लिए बहुत ही मन कर रहा है कि आपका दिन, आपका समय कैसे बीत रहा है दोस्तों. और आज के दिन के 12 बज चुके हैं दोस्तों. आप सभी अपने कामों में से थोड़े से मतलब फ्री होने वाले होंगे या हो चुके होंगे. और तो आइए, मुझे पता है कि आप सभी फ्री हो गए होंगे, 12 बज चुका है. और आप सभी दिन का मतलब दिन की चाय वगैरह वगैरह स्नैक्स खाने के लिए आप रेडी हो रहे होंगे. तो चलिए, आप सभी हाजिर हाजिर होइए. आप सभी हमारे साथ. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड को, और मुझे आपके संदेशों का इंतजार

रहेगा और हिंदी के खंड पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। तो चलिए, हमारा समय पूरे 12:40 तक है दोस्तों। तो सुनते हैं बहारा इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत बहारा श्रेया घोषाल के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों. और वो इन्हीं अरे ताकन शायद में चुमो कन ऑफिस लम पंग लानी से अरे बॉक्सी आ

zingdar sari lama kan wagaton hun an mangbok si a an oh engpo chuni se to chaliye filhal हम तो बस यूं ही बकबक करते चले जाएंगे, आपको की सुनाते जाएंगे। खैर, जिन्हें बातें करना है, मतलब जिन्हें बातें नहीं करनी है वो ना करे, कोई बात नहीं। मैं तो आपसे बातें करना चाहती हूँ दोस्तों, तो आइए मैं आपके इस समय को, इस पल को बहुत ही हसीन और खुशियां से भरना चाहती हूं दोस्तों। इसलिए मैं अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपके इस पल को, आपके यादों को मैं ताज़ा करना चाहती हूं दोस्तों। यस, तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम और लता मंगेशकर जी के आवाज़ में गाया गीत, जाने दिल में कब से है तू, मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

यस तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सोनू निगम और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया गया जाने दिल में कब से है तो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और यस, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ जल्दी से, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। और यस, और यहाँ पर मैं आपके संदेश की तरफ दोबारा चलना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून, खूबसूरत आवाज वाली आरजे वियली, इट्स मी अमोस शिलोंग। ओ क्या हो गया फिर आप आपके व्हाट्सएप को? तो व्हाट्सएप अच्छे ले तो मासे इस सेगमेंट का लाऊंगा इतना रेंगन या एसएमएस का ज्याक सही दू तो लाऊं मासे ही एरो सोई के दू चू जन्नत मूवी मूवी अल्ला जन्नत मूवी अल्ला जरा से दिल में दे जगह तू के इन असक खा रोन प्ले ला कलोम गो तंग रोन तीनी कन प्ले इंगे यंग तिंगे ओ व्हाट्सएप पोचो लाऊ छिया छिन ले ओ गन हो तक एम chuan ma tlong a mission bank hian re lawe kan rile lu mai aron ti ani oh a chat su chuan omega sang te hian ka ngai zual thing buk lim thi tho heu heu kara i o han sia chu ha ha chol do yang min do me ma se ni asale mai ni salai ta kanaron ti bambe kami ओ यस, तो चलिए अमोस की तरफ से जो फरमाइश गीत है जरा सा दिल में दे जगह तू, यस आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

0: I know you would have enjoyed yourself agar tum dinner pe jaati.
1: So, दोस्तों आप सभी का दिन समय कैसे बीत रहा है हमारे पेश के गीतों को सुनकर. तो यस, निखिल दी स्वाजा की आवाज में गाए गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा. तेरे बिना, यस, आपके बिना हम अधूरे हैं दोस्तों, कभी मत भूलिएगा. ठीक है, FM जो 100.7 पर हम आपका इंतजार करते हैं. ठीक है, यस. तो चलिए, एलजेड साइलोहियन लथंग थंग लो अंग ललवानी ही थंग मयंग ओ ललवानी. अच्छा दिन ngai zwa de min tia chen in lal van de min tia mo o indu tu in kam ming in lo phwa mai ya tro ma se na poi la we kung te hian amo sa ron lan hi chuan ke ni chu min she to lo ron di vel stani he mi sing hi chu o.

हजार बार सोचा कह दूं कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मैं रहूँ या ना रहूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत अरमान मलिक की आवाज़ में गाया, बहुत ही सुंदर सा गीत दोस्तों, आप सभी को सुनकर अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी दोस्तों को, बहुत ही खूबसूरत गीत आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से, रांझा। यस, तो इसके बाद हम आपके संदेश की तरफ चलेंगे, शायद वी कुंती की तरफ से संदेश आया है। तो ये अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम, रांझा।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को रांझा गीत कैसे लगा? मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ और मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपने रांझा से हमेशा खुश रहें। आपका प्यार का जो संबंध है ना दोस्तों, रिश्ता है, हमेशा बरकरार रहे। और तो चलिए, यहाँ पर मैं संदेश पढ़ना चाहूंगी मेरे दोस्त कुंगते ह्यान कसोई दिकल लोम का मैसेज में सजोक छ्यार लविन अनु नोंग जो की लव छ्यार तमे चु छ्यार तुर ओम चुआन पेंडिंग लेम लौला पेंडिंग लेम लौ उला कदु खोप मई कुंगते इमिंग इमिंग थर कन फुआ ओ हे कसोई दुंग एम ओ ngoro i thin rim le ka law bok sia en tik lai po mo vui rengang chi khai chem vui mui pu an ding chi kha ini ini in ke she ta mo kong te chuan jila za ma hian rjvl i rjvl message itiar hi ani telin ithiam tul tul kati vl amo sa shilong ron al rôn lân vang emo lân lâu pon om har kebin lam mi chu the hil ming chak mai la poi ka til lâu ber te zing mi ani hia lang a thei phei chuan a message po hi chiar chiar mai zia chin la ka ti

Rontian is a mahian. Oleng po chu ni se kungte kalawi lo sham sham se ke ma thiam lo ni e o kungte kalaw mo mai ani chuan tuna tuna chang chuan i message hi kan chiar ma saber to chi nang o tiro kungte chuan ka u hi lo lang le cha se chuan kan dik mấy tuổi rồi nha mò ô mà xe hay à rồi tắt box xì à tôi chơi liệt phiền mình सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को चन्ना मेरे या अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए और ये गीत यस ये गीत दोस्तों इस खंड का आखिरी गीत रहेगा ठीक है और मैं वापस आऊंगी 1:50 पर ठीक है दोस्तों अपने आखिरी खंड को लेकर और आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और कहने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों लेकिन क्या करें हमें हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहता है तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे सुनाए गए गीत आप सभी को पसंद आ रहे होंगे दोंगा साइड लो हियान ngai kha ka nuwa me aron ti ani kan ban lo mem be o dongga बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह हमारा साथ देने के लिए हमें सुनने के लिए तो चलिए जी तो नहीं करता है लेकिन आपको छोड़ के जाना है हमें मैं वापस आऊंगी अपने आखिरी खंड को लेकर दोबारा और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM सोय 100.7 तो प्यार भरा यस ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम और तब तक के लिए दोस्तों आज भी को इजाजत दीजिए चन्ना मेरे या मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

0: नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के खंड पर जुड़ी है फिर एक बार। आज के लिए अपने आखिरी खंड को लेकर हाजिर है आप सभी के लिए आरजे वीएली, और मैं आप सभी का इस खंड पर मैं स्वागत करना चाहूंगी दोस्तों। यस, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा दोस्तों। यस, और जिंदगी में ना दोस्तों कभी गम आएंगे, कभी खुशी आएंगे, लेकिन आप कभी अपने हौसले को मत छोड़ना, हमेशा अपने हौसले को कायम रखना कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दोस्तों हमें खुशियां जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और हम जो चाहते हैं ना वो भी पूरा होगा, सच में दोस्तों, बिलीव करिए, ठीक है। अगर हमें भगवान पर भरोसा भी है ना दोस्तों, आप सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं कबीरा, मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कबीरा गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, और गीत की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर मिहिर छदूलाउ मैसेज ही अतलंग छ व्याओ तो अंगेम ओ कत्ते छिन रंति वेला मिन बे छदु बक लावा है कहो संक्षेप तो छेन्या ओ मसे क बुई छवांग लवे। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं हीर मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से ही, एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारा समय खत्म होने वाला है। यस, आज के बाद इस वीक में तो मैं हाजिर नहीं होंगी दोस्तों आपके लिए। अगर हाजिर होंगी भी तो नेक्स्ट वीक होगा दोस्तों। यस, और

तक हम नहीं मिलेंगे जब तक इस तरह FM Zoy 100.7 पर हम नहीं मिलेंगे. तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना दोस्तों. यस, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपना ख्याल रखें, ठीक है. और यहाँ पर सिजितियान बेछदु लौलम निलुल लवे ललंग जोल एस एम एस अतलंग छदु लौ वेल सी कोयलु तुका ngai thak lama chan kalata ani bere chu lau ring chu lau re nga po puan chui lam hi zir ve ka du dewa puan chui lam hi zir ve ka du dewa ka in ngai to a ron ti vel ani si zit hian e lau zir te achanya ke po ge thiam lawa थियाम लौ रे रें खोल खोई ही मो का थियाम लौ कुत्ता थिल कन छुई ते पोही मो का जई लौ लु तुकता नि चमो चबांग चान थिल पा छुई थियाम ते ही कंगाई सांग तो पनि मो जामते अंग हे मो ते चल ने फिलहाल इस कन का दूसरा गीत जिंदगी कुछ तो बता जुबिन नौटिया की आवाज में गाएगी. सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के लिए.

जिंदगी कुछ तो बता दोस्तों, जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप सभी को एक गीत के साथ, आखिरी गीत के साथ सचमुच का दोस्तों अलविदा कहने का समय आ चुका है। यस, कहना तो चाहती नहीं हूं लेकिन दोस्तों क्या करे, ऐसा करना पड़ता है हमें समय की पाबंदी के कारण। यस, तो चलिए आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी दोबारा मेरा साथ देने के लिए, मुझे संदेश भेजने के लिए, प्यारे प्यारे संदेश भेजने के लिए। और यस, FM ज़ोय 100.7 के जरिए मेरे जितने भी अच्छे दोस्त बने हैं जो हमें सुनते हैं, जो इस हिंदी के खंड को पसंद करते हैं दोस्तों, हमें सुनते हैं, हमेशा मुझे संदेश भेजकर खुश करते हैं, उन सभी दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी दोस्तों। और मैं चाहती हूं कि आप सभी के लिए कि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। यस, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखिए, सोचिए, कहिए दोस्तों, करिए, ठीक है। थिल अच्छा जोंग लम पंगली स्या खान लौ थिर दान ही लौ थियाम शाम शामुला, तो फिर इस तरह अगर है अच्छा लौ जोंग ऐ लौ थिर खचवान थिल अच्छा थे लौ नि जो अकल दिख थे लौ नि जो मो। तो चलिए मैं चाहती हूँ आप सभी अपना ख्याल रखे, खुश रहे। तो आइए आपके इस पल को और भी हसीन बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। मैं अगर सितारों से कहूँ बहुत ही खूबसूरत गीत आतिफ असलम की आवाज में गाए गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। तब तक लिए दोस्तों आरजे वीरी को इजाजत दीजिए और ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम और आरजे वीरी की तरफ से।

0: Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan chu ani tuna hian tlai dar thu mani a chuti zong chu vo in chomir thla tarik niriat zir top ni a FM zo oi changa program kan ti chwa the te chu ni a FM gold program deli changa lak chon ngai thak chun zom the ni ang ngai thatu te chunga lom thu kan soya lalom zuali kani a control room engineer duty hi lalruat zuala ani tlai dar li le chan via kan program tho ni na kan chun zom le ang min lo ngai thale cheu donia
1: में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ए पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विद्युत हलाई चिरु थैगल काची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। ये अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमरीका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं FM 100.7 MHz पर। प्यारे श्रोताओ, मैं हूँ आपकी आरजे नूबई और जी हाँ, आज के शाम फिर से आप लोगों के साथ यहाँ बिताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ मैं जो आप लोगों के लिए गीत प्रस्तुत करूँगी वो पसंद आएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओ, इस खंड में हम सुनेंगे हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत। तो हम शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में और कि गीत की बोल है इश्क कभी करियो ना। तो आइए सुनते हैं इश्क कभी करियो ना।

तो मेरे प्यार श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था सुनिधि चौहान की आवाज में, और गीत की बोल है इश्क करियो ना। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा बजरंगी भाईजान फिल्म से, और गीत की बोल है जिंदगी कुछ तो बता।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था जिंदगी कुछ तो बता, और ये बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत है जो है बहुत ही खूबसूरत गीत। लेकिन इस गीत को सुनने से पहले हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की ओर, और मुझे यहाँ मिला है सीजे तक की ओर से एक खाई बैले देवती नामले हुन मन नाम बोकले अरंतिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीजे तनंग पो जी भाई हमारी ओर से। और जी हाँ, आज रात में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी, तो आप सुनते रहिएगा हमारा FM जवाई। और मुझे यहाँ मिला है मिंग मोइते की ओर से आर्जय नुबई नमस्ते देवती नामले अरंतिया दिवती नुआम फोंग फोंग ले आपको भी मेरी ओर से। और हमारा इस खंड का दूसरा गीत होगा साथ रहे तू मेरा।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था सनम पुरी और जुकू के आवाज में और गीत की बोल है 7-13। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में क्या बतलाए। तो आइए सुनते हैं क्या बतलाए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे श्रोता, ये था अनुराधा पौडेल और उदित नारायण की आवाज में, और गीत की बोल है क्या बतलाए। तो अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा नवजोत आहूजा के आवाज में खाट। तो आइए सुनते हैं खाट।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था नवजोत आहूजा के आवाज में खत, और ये गीत बहुत ही खूबसूरत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। और जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब समय फिर से आ गया है आप सभी लोगों से इस खंड के लिए विदा लेने का, और मैं आप लोगों के पास फिर से लौट के आऊंगी 6:40 पे। उस वक्त मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओ, मैं हूँ आपकी आरजे निभोई और ये हमारा हिंदी का दूसरा खंड है। इस खंड में मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओ, हम शुरुआत करेंगे अग्नि गीत से और गीत की बोल है सारो रे। तो आइए सुनते हैं सारो रे आप सभी लोगों के लिए।

तो मेरा प्यार श्रोता, ये था अशांति बैंड का गीत, और गीत की बोल है हमार दिल। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा दो पत्ती फिल्म का गीत, और गीत की बोल है राजन। तो आइए सुनते हैं राजन।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था उस गीत की बोल है राजन, और ये दो पत्ती फिल्म का गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, आप लोगों से कोई संदेश नहीं मिला, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत रहेंगे सुकून, और ये ऑथम्स के आवाज में है, ये गीत बहुत ही हिट है अभी। तो आइए सुनते हैं ऑथम्स आप सभी लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि जिस तरह मुझे पसंद है उसी तरह आप लोगों को भी पसंद आएंगे। तो इस गीत का आनंद लेते हैं और सुनते हैं सुकून।

तो जी हाँ मेरे प्यारे साथा, ये था ये था हमारा सुकून। अब हम सुनेंगे इस खंड के हमारा आखिरी गीत, और हमारा आखिरी गीत होगा लव आजकल फिल्म के गीत शायद। तो इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी, फिर लौट के आऊंगी आज रात 9 बजे।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूँ आपकी आरजे नुबई और ये हिंदी का आज रात के लिए आखिरी और तीसरा खंड है। और इस खंड में मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि ये खंड है मेरे चॉइस का, यानी कि मेरे पसंद का गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मिजोटोंग तक कलुम दुम रा तीना।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था गुलजार की आवाज में, और गीत की बोल है दिल तू जान तू। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, उससे पहले हम चलेंगे आपके संदेशों की ओर। और लद्दू सोंग इज घन जोंग न समय में थे कपमा। मुझे यहाँ लल दिन पुया फल कौन की ओर से मिला है, आरजे नंग मा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले, आरजे जोंग जोंग तान रंती ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत होगा देखा तन्नू। तो आइए सुनते हैं देखा तन्नू।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को यह गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था मोहम्मद फैज के आवाज में, और गीत की बोल है देखा तन्नू। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की, और हमारा अगला गीत होगा दिल ये क्यों न माने। तो आइए सुनते हैं दिल ये क्यों न माने।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था दिल ये क्यों कहे। तो मैं मोहित यानी ना जनु बैल दिन पे फल कौन व्यंग लाई ले गुरे साई लौ तान रंती ने गुरे साई लौ तान कंती यंग चानिन लौ आई खतु सोंग सोंग तान कंती पोक दो ननी। तो मुझे यहाँ नया गीत मिला है, वो है फिर कभी मानिया कंगाई था मोइलु तुका। तो आइए सुनते हैं शहीद कपूर के फिल्म की गीत और गीत की बोल है फिर कभी।

तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे प्यारे श्रोता? अभी जो हमने गीत सुना था वो था फिर कभी न लुत्तुक ओवर बोन लुत्तुक नी हा जाने जो कुंग ते पो ही रंचे दू लो रे रे कन सेगमेंट आ ह्यान मम इंग मा रन थन दू लो चु वान जाने कुंग ते पो ह्यान इन आ मिन फत सन देउ तो आंगा कन गायो। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हमारा अगला गीत होगा आतिफ असलम के आवाज में और गीत की बोल है मेरा दिल भी कितना पागल है। तो आइए सुनते हैं मेरा दिल भी कितना पागल है।

दिल भी कितना पागल है। तो मुझे यहाँ एल से साइल यानी नुबई का फसन भेल चे अरंती ओ खा खा खम चौ कम रिंग पो खा लू खा मा मुत इन कंगाई थरें चे अरंती कन वन लोम थीन तक एम खा मा इन रिया ना ते खा नि नंग मानी ओय तु लो नि खा लुलुत तु कनि मम चुवा चामिन लो ngai थचर चर दोन्या। तो हमारा अगला गीत होगा एक प्यार का नगमा है, हे लाही सी एल जेता साई लाउ सी जेता उम्बो का चुवा चुवान का लहू लंपोल ले थीन सी जेता साई लाउ तान कंतियंगा मिंग मोई ते तान कंतियंगा लल दिन पुया फल कौन तान कंती पोकंगा और मुझे रमतुई रिया है नार जे मिजो रानी ची भाई इला अमोई कती नेक्स का तू ना कपूलम नी बली ते तान ले इतान रंती निरम मतुई रियली एंगे इ अंतो नो पंगो क कजोता लोदम जेल तुरागन गाय छे। और ये गीत मैं खास करके इन जवाई तान अमिंग कर लमसक होतान देन खान

जी हाँ, मेरे प्यार श्रोता, ये था एक प्यार का नगमा। अब हम सुनेंगे इस खंड के हमारे आखिरी गीत, और हमारा आखिरी गीत होगा सनम पुरी की आवाज में कुछ ना कहो। और इस गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी आज रात के लिए, और फिर आप लोगों के पास बहुत ही जल्द लौट के आऊंगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिएगा FM जो आई, और आपके आरजे नुबई की ओर से टाटा बाय बाय, हैव अ गुड नाइट स्लीप।